शिव जो अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जचने उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पल मोह बाध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सापर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तर तब देह अपारा। जाब या करख कर तुह कब हूं, तुम मैं मिलत दे तार सब हूं। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरे आलम।

നിർവകാർ നിർലംബ ആദനീലനാദ സംബ ताका मोड़ उचारत बेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महा मोड़ कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुद है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तो

भगत पाए। मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्भ कुमा नमक ते हुटै, सूझ करे दिन स रात, मन की मैं तन ते जात। इस देही को बहुत साधन करे, मन ते कबहू न बिख्या टरै। जल तो वह बोध अनीत, सुध का हुए काति पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊचै। नानक नाम उदरे पथत बहमूच, बहुत सियान पजाम का भव व्यापे, अनक जतन कार त्रापै। भेख अनेक अग्नि बुझै, कोट पाप दरकै नहीं सिजै, शूर सुनाई ऊपयाल, मुह पिया पेह माया जाल। अबर करतूत सगड़ी जमडानै, गोविंद भजन बिन तली माने, हर का नाम जब दुख चाहे, नानक भोले सह सबाए। चार पदार्थ जेको मंगे साचना की सेवा लागै, जेको अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जेको अपनी शोभा लूरै सत्संग एहो में छोरै, जेको जन मन ते डरै साचना की सरणी परै। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताकै बर पर जासा, सगल पुरख में पुरख प्रदान, सत्संग जा का मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सुख नियै सब ते ऊंचा, जा का मन होय सगल किरी ना। हर हर नाम तिन घट घट जीना, मन अपने ते बड़ा मिटाना, पेखै सगल सेठ साजना। सुख दुख जन समद टीता, नान पाप निधि पा,

सगवन करतार करुणा में दीन बिनती करै नान तुम्हारी कृपा तरै संग सुहाय स्वाभिन चीत जो पैराय तां सो प्रीत बलुआ के ग्रह पितर बसे अंत केर मै रंग रसै दृढ़ कर माने मने प्रतीत कार आपे मुड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ पिकार महलो त्रोह याहू जुगत बिहाने के जन्म नानक राख लिहु आपन कर कर्म

संत सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी तुमते हुए स्वाज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुरबानी सलोक दीन हर प्रछोट कै लाके अन सुय नानक कहु न सिजाई पिन राय प्रचैट पदी दस वस्तु दे पाछे पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावै एक बिना दे दस पी हरले तो मूड़ा कौका करे जिसता कर सो नाई चारा ताकू की जय सत नमस्कार जाके मन लगा प्र मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस दिन अपना हुक्म नाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगणत साहू अपनी दे राख खात पीत बरते अंदेउलास अपनी अमान कश बाहर साहू लिय अखियानी मलोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बाहर का विश्वास न होवे जिसकी बात से आगे राखे प्रभु की आके माने मत है उसते चौकन करे निहार नान साहब सदा दियार अनक पात मे हेत सरपुर हुवत जान अनीत बिरख की छाया सो रंग लापे ओ बिन से उमर पछतावे जो दिसे सो चरण हार लपट रहो ते अंध अंधार बटाओ सो जो लापे ने ताको हाथ ने आवे के हे मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन तन कुटम सुभा मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोपन तन मार मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असब बस्त्रा मिथ्या रंग संगमा पेख हस्ता मिथ्या त्रो मोहपमान मिथ्या सुपर करत गुमान अस्तर पासाद की शरण नानक जप जप जीपे हर के चरण मिथ्या शरण परंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्प कुहरै

पावै। मिथ्या तानी पल पुकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा, बिन बूजे मिथ्या सब पए सफर दे, नानक हर नाम ले। बिरथी साध की अरजा, सर पिना के होव सूचा, बिरथा ना बिना तन अंध, मुख आवता के दुर्गंध। बिन सिमण दिन रैन बिरथा पिहाय, मेघ पिना जो खेती जाय। गोपिंद भजन बिन बिरथे सबका, ज्यों कृपन के निरारताम, तन तन ते जन जिह कट बसुर ना। नानक ताके बरपर जाव, रहत अवर कशवर कमावत, मन निप्रीत मुखो गंडलावत, जन हाप उपर बीन, बाहर भेख न काहु भीन, अवर उपदेसै आप न करे आव चाव, जन्मे मरै जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसके सीख तरै संसार, जो तुम पाने तिन प्रजाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपे माने, आपे आप अब करतन बेरा, किसै दूर जनाव किसे बजावत नेरा, उपाव श्याम सो तेरा, सब जाने आत्म की रहत।

देव प्रसाद शक्ति अमृत खाय तिष्ठा करको राख मन माय देह प्रसाद सुगंध तन लाय तुखो सिमरत परम गुर पाय जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह सुबसना आठ पैर सिमरु तैसरसना जे प्रसाद रंग रूप नान सदा त्याई त्यावन जोग जेह प्रसाद पाठ पटम्बर हंडाय तिसह त्याग अवरकत लाभ अवरकत लभावे तिसे त्याग अवरकत लभावे जे प्रसाद सुख से सुई जय मन आठ पैर ताका जस गावी जय जेह प्रसाद दूसा को मन मुखता को जस रसन बखाने जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पा ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पाव हे नानक पासे ती कर जाय जेह प्रसाद अरु कंचन देहि लबला भूत सराव स्नेहि जे प्रसाद तेरा हुला रहत मन सु पावे हर हर जस कहत जेह प्रसाद तेरे सगल सिद्ध ढाके मन सरणी पर ठाकर प्रभुता कै

कोई कर कृपा अंतर उतारे पास प्रेद मुद पाथर को तारे सर्व रोका खुद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जोगत कितना पाइये धर्म तस मिला जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पापन का निवात का नाम सत राम दास आत्म राम तिस नद्रिया दास संतन पायतन पाया सदा निकट निकटर जान सु दास दरगे परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी फरै सकल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास पर आपकी आज्ञा तुम हिताब जीवन मौसो कहावे तैसा हरख तैसा सो सदा आनंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साई जोगत नानको पर कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सरेठा जित जित कर राखे तैसा तिन नाम आपे करण कराव जो का प्रभावे सोई फन होगा पसरू आप हो अंतरंग लखे न जाय पा ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल।

0: आवै। हुक्मे उच नीच पिहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, करका देखे अपनी वडियाई, नान सब मिलिया समाई। प्रभ भावे मानख गत पाए, प्रभाविता पाथर त्राए, प्रभावे बिनसा तिराखे, प्रभाविता हर गुण भाखै। प्रभाविता पात ते उदारे आप करे आपन बिचारै। दोहां सिरियां काया स्वामी, खिलै बक्से अंतर जामी, जो भावे सो कार करावे, नानक त्रिष्टि अवने आवै। कहो मानुख ते क्या होया पे, जो तिस पाए सोई करावे, इसके हाथ होय ता सब चले, जो तिस पाए सोई करे। अन जानत भिख्या मेरे चै, जे जानते अपने आप बचै, भरमे फूला दहत तावे, निमुख माए चार कुण प्रयावे। कर कृपा से अपनी भक्ति, नानक ते जन न मिलै। खिन मैं नीच कीट को राज पार, ब्रह्म गरीब फनवा, जा का दृष्ट कछु न्यावे, तिस तिस का दैद पटाए, जा को अपनी करे।
1: जा को अपनी करे बख्शीस, ता का लेखा ना गने जगदीश। जियो पिंड सब तिसकी रास, कर घर पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बनता बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई। इस का बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पाए सोई फन थियो। कबू उच नीच में बसे, कबू सोख हरख रंग हसै, कबू निंद चिन्ह व्यवहार, कबू उब आकाश प्याल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार। कबू नृत्य करे पो भात, कबू सोए रहे दिन रात, कबू महाक्रोध विकराल, कबू सर्व की होत रवाल, कबू होए बहे बड़ बड़े, कबू होए बहे बड़ राजा, कबू भिखारी नीच का साजा, कबू अब कीरत में आवे, कबू भला भला कहावे, ज्यो प्रभरा कहते भी रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंडित करे बख्यान, कबू मोन धारी लावे ध्यान, कबू तरती स्नान, कबू से साधक मोह ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जौन भर में परमिया। नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभावे तिवे नचावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा और न कोए। कबू साध संगत ये पावे, उस स्थान तबोर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म कह संग, ज्यों जल में जल आए कटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के साथ कुर्बान। श्लोक

नानक गर्भ गले यशवरी जिसके अंदर राज मान सो नरक पाती हो सोवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होत विष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे बोझोन परमावे तन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त आगे सुख पावै धनवंता होय कर गर्भावै तिन समान के संग न जावै बहु लश्कर मानुख उपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदे आप हंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे महान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे हंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं दवे हर दरगाह को कैसे गावे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सब गिरेन जाका मन होए को नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब बे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मी तब लगने चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म रह देह सजाए प्रभु कृपा दे बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छुटै सहस कटे लाको उठतावै त्रिपत न आवै माया पाछे पावै अनक भोग बिखिया के करै नहीं त्रिपतावे खाप खाप मरै बिना संतोख नहीं को राजे सुवन मनोर बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दिष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो कुछ किनो सो अपने रंग सब ते दूर सबु कह संग बूझे देखे करे विवेक आपे कापे अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक सदी रिया समाए आप उपदेश से समझे आपे रजिया सबके साथ आपकी नो अपन विस्तार सब किश उसका वो करने हार उस दे पिन कहो किश होए थान थनंतर एक कैसो होए अपने चल तब करने हार कौत करे रंग पार मन में आप मन अपने माए नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने बखयानी सच सच सच सब की ना कोट मधे किन बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घर घर सुनी सरुण बखयानी पवित्र पवित्र पवित्र पनीत नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक संत सरन जो जन पर सो जन उधर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपति संत के दुखन आर जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुट्टे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत हो मलीन संत के दुखन सो भाते हीन संत के हदे को रखे न कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख पवे संतन के दुखन काग जोन लवै संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिग जोन किरमाए संतन के दुखन तृष्णा में जलै संत के दुखन सब को चलै संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच निचाए संत दुखी गाथाओ को नाहे नानक संत पावै तायो भी गत पाए संत का निंदक मात ताई संत का निंदक खिंटिक न पाई।

रूप नरेख न रंग केश त्रिकुण ते प्रभिन्न तिसह बुझाए नानका जिस होपे सो प्रसन्न अटपदे अपनासी प्रमन में राख मन की तो प्रीतिया तिसते परे नाई किश कोई सर्प निरंतरे को सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर की सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी पाव नानक मन इहु निराव मनसा पूर्ण सरना जोखा जो कर पाया सोई होगा हरण पण जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर

प्रभु के रंग राचन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे। हुए दाते दुखाटन हा, जाके संग तरे संसार, जन का सेव सोड पागे, जन के संग एक लिवरागे। गुण गोविंद कीर्तन जन का पै, गुर प्रसाद नान पर पाए। सलोक आद सच जुगाद सच है, पै सच नानक होसे, पै सच आठ पदे। चरण सत सत प्रसनहार, पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सतनहार, नाम सत सत्यावनहार। आप सत सत सतारी, आपे गुण आपे गुणकारी। शब्द सत सत भगता, सुरत सत सत जस सुनता। बुजन हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रसोए। सत स्वरूप हृदय जन मानिया, कर्ण करा तन मूल पछाणिया। जाके हृदय विश्वास प्रया, तत् ज्ञान तस मन प्रटाया। भय ते निरभउ होए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माय समाना। वस्त माय दे पद कढाई, ताको भिन्न ना कहना जाय। बूझे बूझन हर विवेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेव सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक न मरीत।

भक्त में त्याव। चरण कमल सो लागे प्रीत, पद करो पौखी नितनीत, एक ओट एक ओदार, नानक मांगे ना प्रसार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर सुपाए बिरला कोए। जिन चाखे आसे जन, तृप्ता ने पूर्ण पुरखनी डोलाने। सुपर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाव साध के संग। परे शरण आन त्यान सब त्याग, अंतर प्रगा अंदर विराग। बट भागी जपिया प्रसोए, नानक नाम ते सुख होए। शिव की मन सब पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत रहे। जन को प्रभु हो दया, सेवकी नु सदा निहार। बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। ऐश पुनी सरदा सब पूरी, रब रही।

का करो उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पहर प्रपेखो नेरा, मिटे ज्ञान बिन सह अंधेरा। सुन उपदेश हिरदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। हलत पलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतरे रुतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै ते साच प्रीखिया। मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह निभै खेप तुम्हारी। एकट एक रखो मन माहे, नानक बहुर न आवै जाहे। तिस्ते दूर कहां को जाए, उबरै राखनहार त्याए। निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पहुंचनहार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी, दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सृष्ट। चरण कमल जाकी अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सुहूत निहाल, ताकै निकट ना आवत काल। अमर पहे अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया सलोक। ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगाश अष्टपदी। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समगरी एक सकट माहे, अनक रंग नाना दृष्टाहे। नौ निधि अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत नाद, कह न जाइय चर्ज बिस्माद। तिन देखिया जसाब दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट ब्याप रहा भगवंत। तरन माहे आकाश पयाल, सर्ब लोक पूर्ण प्रतिपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बै संतर माहे, चार कुंट दा दिशे समाहे। तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देख, ससिर सूर नखत्र मैं एक। बाणी प्रभ की सबको बोलै, आप डोल न कबहू डोलै। सर्ब कला कर खेलै खेल, मोल न पाइयै गुणा मोल। सर्ब जोत मैं जाकी जोत, तार रहो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं एह विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख मानै, करन करावन हार प्रभ जानै। अंतर बसे बार पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस पावै ता करे विस्तार, तिस पावै ता एकंकार।
अनेक कला लखी ना जाए, जिस पावे तिस ले मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप भरपूर, अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जने आप बुझाए, सर्वभूता वरतारा सर्व नैन आपे खनारा, सगल समग्री जा का तनाया, अपन जस आप ही सुना, आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सब कह मद लिप तो रह, जो किश कहना सो आपे कह, आग्या आवै आग्या जाए, नानक जा पावै तां ले समाए, इस ते हुए सो नाही बुरा, उरै कहो किने कश करा, आप भला कर तू ततनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, उत पोते अपन संगराच, ता कि गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सोझी पाए, तिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक जान, जो जाने तिस सदा सुख होया, मिलाए ले प्रभ सोयो, तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान, तन तन तन जने आया, जिस प्रसाद सब जगत राया, जाने आवन का यह सवाऊ, जन कै संग चित आवै नाऊ, आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार, सलोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाऊ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाव अष्टपदी, पूरे गुर का सुने उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद, आस यन त्यागो तरंग, संजना की धूर, मन मांगा छोड़ बेनती करो, सास संग अग्न सागर तरो, हर तन के परले हो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमानंद, नरक निवारे उदारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो, चित चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के बचन, मलीक लाल ए रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप तरै लोका निस्तार, सफल जीवन सफल तां का संग, जा कै मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन नंद करे प्रभ गाजै, प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे, शरण जोग सुन शरणी आए, कर कृपा प्रभ आ मिलाए, मिट गए बैर पए सबरे, अमृत नाम साध संग लैण, सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण हुई सेवक की सेवाल, जंजाल विकार तिरै ते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ धारी, नानक निभही खेप हमारगी, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत,

वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लही त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कारनौ निधि आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दिदार का

जैसा मानिए हुए ना तैसा रहाऊ। नरपति एक सिंहासन सोया, सुपने पया भिखारी, अष्टराज बिशरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राज भयांग प्रसंग जैसे हैं, अब कश मर्म जनाया, अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन नया। सर्वेक अनेक स्वामी, सब गढ़ भोगवे सोई, कह रविदास हाथ पै निरे, सहजे हुए सो होई। सर्वे कने कै स्वामी,

बोलना जी। सतनाम श्री वाहे गुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे कर नौ निदे आवै ताए। सब थई हुए सहाय, सब थई हुए सहाय दसवां पातशाह। धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, सब थई हुए सहाय। दसां पातशाहियां की जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां प्यारिआं चौहां साहिबज़ादिआं, 40 मुक्तिआं हटिआं जपिआं तपिआं।

जैसा मानिए होए न तैसा रहाओ। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी।

आज पोयंग पर संग जैसे हैं अब कश मर्म जनाया। अनेक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब घट भुगवै सोई।

आप सगले विचारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जप बनवारिया। तेरा दर्शी अपार नाम बोले जियो नित जपे तेरे दास पुरख अतोल जियो। संत रसन बुट्टा आप तुट्टा हर रसे सही मातिया गुर चरण लागे महापागे सदा अंधन जागया। सदे सदा सिमरतब स्वामी सास सास गुण बोलई बिनवंत नानक तुर साधु नाम प्रभु मोलई। राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसादे। सनक सनंद मेश माना शेख नाग तिर मरम न जाना संत संगत राम हृदय बसाई हनुमान सर गुरु समाना। सुरपत नरपत नहीं गुण जाना चार वेद और सिमर पुराना कमला पत कमला ने जाना। कह कबीरे सो पर में नाही पग लग राम रहे सरनाई। दिन ते पहरे पहर ते करिया आव कटे तन चीजे काल अहिरी फिरे बदक ज्यो कहो कवन बिद कीजे। सो दिन आवन लागा मात पिता पाई सुत बनता कहो कू है काका। जब लग जोत कया मैं वरती आप पशु न बुझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सुझे। कह

परो एक की शरणान। जो जन भाव भगत कछ जाने ताको अचरजे कहो, ज्यों जल जल में पैसनिक से त्यों टुर मिलो जुलाहो। हर किलु गमै तो मते कपुरा, जो तन काची तज कबीरा, रमैया कहने हुरा। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम ना पूलो कोई, क्या काशी क्या उखर मगहर, राम हृदय जो हुई। इंद्र लोक शिव लोके यबो, उचित तप कर बाहुर एबो।

अंत न कहु संग सही पुत्र कलतर लक्ष्मी माया इन तो कहो कबने सुख पाया कहत कबीर और नहीं कामा हमरे मन तन राम को नामा राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमर बिने बूढ़ते अधिकाई बंता सुतु दी गृह संपत सुदाई इनमें कछु नाहे तिरु काल अवध आई अजामल गजे जंगन का पत ते कर्म कीने त्यू उतरे पार परे राम नाम लीने सुकरे कुकरे जोन परमे तू लाज न आई राम नाम शाडे अमृत काहे बिख खाई पता जी परमे कर्म विद निखेरे राम नाम लेही गुरप्रसाद जन कबीरे राम कर संदेही तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद गहरी करके नींव खोदाई ऊपर मंड पछाए मार कंडे ते कोदकाई जिन तृण तर मूंड बुलाए हमरो का तरम संदेही काहे रे नर गर्व करत हो बिन सजाए चूटी देही रहो मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई बारह योजन छत चले था दही गर्जन खाई सर्वे स्वयं की लंका होती रावण से अधिकाई कहाँ पयो दरबान दे हाथी खिन में पई पराई दुर्भाषा स्यों करत ठगोरी जादू विवल पाए कृपा करी जन अपने ऊपर नाम दू हर गुण गाए।

0: सेवा गुण सांझा, जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उर तारियो मन माजा, धर्म रहे दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझा। जय श्री मल्ला चौथा। सत संगत साध पाई वडभागी, मन चल तू पे अरूड़ा, अनहते तुन वाजही नित वाजी, हर अमृत तार रसे लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर मुक्त उड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई, सतगुरे गुर मिलियो लाए चपीड़ा। साकत बंद पे है माया, बिक संचे लाए जकीड़ा, हर के अर्थ खर्च ना सक है, जम काल से सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु श्रद्धा लाए मुख तूड़ा। हलत पलत हर सुबह पावे, हर रंग लगा मन गुड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान, हरियो मन मुड़ा। जय श्री मल्ला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतसार, हर हर सिमरो आगम परा, जिस सिमरत दुख मिटे हमारा, हर हर सतगुर पुरख में लावो, गुर मिलिए सुख हुई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो तारे, हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट हुई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा, मेरे मन तने अमृत मीठ लगाना, हर हर दया करो गुर मिलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर के रंग मेरा मन राता, हर हर महापुरख गुर मिलो, गुरु नानक के नाम सुख होई राम। जय श्री
1: महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सुधा ले लाहा, हर हर हर हर भगत दड़ावो, हर हर नामो महाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर के रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग महाराम, औसखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लेलाहा, हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिले हर ओ महाराम, कर कीरत जा अगम थाहा, खिन खिन राम नाम गवाहा, मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक पातु महाराम। जय श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना ले लाहा, खिन खिन पावत करे ओ दिन राती, गुरमत पावतो महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लीलाहा, गुरमत पांच दूत बसवावे, मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा लेलाहा, दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नामो महाराम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगन्नाथ जगलाहा, तन तन बड़े ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगतो महाराम।

जप नाम रतनो महाराम आई सखी मिलो मिल गुण गावा गुरमुख नाम जपो अरला हर हर भगत दड़ी मन पाई हर हर नाम माराम आपे बड़ दोन बड़ सहा गोरमुख पूंजी नाम सहा हर हर दात करो प्रभाव गुण नानक नाम महाराम जय तजरी महला चौथा मिल सतसंग संग रहा पूंजी नाम गुरमुख वेसा हर हर कृपा तार मधुसूदन मिल सत संग माराम हर गुरुवाणी सुन सुन कर कृपा सदगुरु मिला गुण गावे गुण बोलह वाणी हर गुण जापो महाराम साव तीर्थ वर्त जग पुन्न तुला हर नाम ना पूजे पूजा हर हर अतोल तोल अत पारी गुरमत जपो माराम साब कर्म तर्म हर नाम जपहा

राव कोका तो सब बाहर बाहर, कोका तो समयो बनंदी सचन न लखिए सागन सत बजो सर्वनवासी कट कटवासी लेप नहीं अल्पहियो नानक कहत सुनोरे लोगा शांत रसन को वसहियो जैत श्री

ताओ मने घीर पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आशा मन सबूर जप प्रभ को गौर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कमो चूरो बुझ प्रभ को जय तसरी महला पंजमा लोंदी अड़ासा जन मेरा कर कर मंगल गावो निके कट कर तिसे बसेरा राव सुख आराधन दुख आराधन विसरण काऊ बेरा नाम जपत कोट सूरज आरा बिनसे परम देरा थान थनंतर सबनी जाई जोदी से सो तेरा शांत संग पावे जो नानक तिस बार ना हुई है फेरा जय श्री महला पंजमा कर चौथा दुप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानब चिंत विसारी अंशोड्यो है त्याग राव जो देखो तो सगल मोमयो तू सन पर गुरु पाग कर कृपा टहल अर लायो तू जम छोटी मोरी लाग तरियो सागर पाबक को जो संत बेटे बड़ पाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग जैत श्री मला पंजमा मन में सतगुरु त्यांतरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हरनामा पर जी मया कराओ काल जाल महाजंजारा

वाको व्याध न कई रहो, जीचे सब संग रहे लिप पे उन माई, एक रंग तत् के बीते सतगुर ते बुद्ध पाई, दया माया कृपा ठाकुर की, से संत दबाई के संग नानक ने तरी है, जिन रस रस हर गुण गाई, जय तसरी महला पंजवा, गोविंद जीवन प्राण तन रूप, अज्ञान मोह मग्न महाप्राणी, अंधियार मैं दीप रहाओ, सबल दर्शन तुम्हारा प्रभु प्रीतम, चरण कमल अनुप अनकवा करो ते वंदना।

दृढ़ कर गए तुम्हारी लूक, काट लियो नानक अपने को, संसार सब के कूप, जैतरी महला पंजवा, कोई जानो हरसो देव जोर, चन गहो बको सुरसना, दीजे प्राण को रहाओ।

पाउड़ी सतगुरु बिट्टो मारे जित में लिया खसम समा लिया जिनक उपदेश ज्ञान जिन दिया नेत्री जगत ने हा लिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से मर जा रहा सतगुरु थावर लेकिन विचारिया।

0: पाए बलंदड़ी बोझ गई रखंदड़ो प्रव्याप जिन अपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जां प्रभै दयाल ना व्यापै माया पोट अगागै नास हर एक त्याया निर्मल पै शरीर जन धूरी नाया मन तन पै संतोख पूरन प्रभ पाया तरे कटंब संग लोक कुल सबाया निर्मल पै शरीर जंतुरी नाया मन तन पै संतोख पूरन प्रभ पाया तरे कटंब संग लोग कुल सबाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परमस्कार जो सत्संग जी सतगुरु की कृपा हुई है अमृत वेले सजे दीवाना दियां हाजरियां भरियां लाही बाणी श्री आस सखी वार दे कीर्तन सरण गीतें ने रास प्राप्त कीता उपरंत सरबत दे भले लई पंथ दी चढ़दी कला आप समूह संगतां दी सुख शांति वास्ते अते नगर थरीके दियां संगतां जिन्हां वल्लों खंड पठरंभ ने अते भाई संतोख सिंह थांदी परिवारां दी चढ़दी कला दी उन्हां वल्लों वी खंड पठरंभ ने। गुरु चरणां विच अरदास बेनती होई है सतगुरु ने पवित्र हुक्मनामे बख्शे जो आप श्रद्धा नाल सरवण कीते ने बने प्रोग्राम अनुसार इस मुख भाग की कथा विचार भाई साहब भाई गुरशरण सिंह जी सरवण करा रहे हैं। सो आओ बड़े प्यार नाल सरवण करिए जो खंड पाठ आरंभ ने उन्होंने भोग कल नूं पैणगे। परिवारों वालों आप जी ने बेनती दर्शन देने गुरु के लंगर की सेवा इस तरह एक खंड पाठ दफ्तर के परिवार आरंभ है उन्होंने भोग अज पेगा उन्हां वल्लों भी गुरु के लंगरां दी सेवा हो रही है। सो आओ हुण सरवण करिए अज दे मुख भाग दी कथा भाई साहब जी हुण पासों। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम

स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी घर में जानो आपे आपन सांगा प्रभराते तुमरी उस तो तुम दे होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म में से धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्मा सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जसन रसन बखानी सगल धान ते उत्तम धान नानक जे घट बसे हर नाम श्लोक निर्गुण हर ए आनया सो प्रभ सदा संभाल जिनकी याद चीत रख नानक निभही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिंतु सासुवार सिगारया गर्भ अग्न में जिने भारया बार पर सब प्यारे दूध पर जो बन भोजन सुख सूद बिरद पया उपर साख सैन मुख प्याओ बैठ को दैन ए निर्गुण कशु न बुझै बख्श ले हो तो नानक सीजै जे प्रसाद धर उपर सुख बसै सुत प्राध मीत बंता संग हसै जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पन पाव के अमूला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संसाद बसा दीने हस पाकर नेत रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मुड़ अंध व्यापै नानक काढ़ लियो पर व्यापै आद अंत जो राखनहार तिस्यो प्रीत न करें गवार जाकी सेवा नव निध पावे तास्यो मूढ़ा मन नहीं लावे जोठा कर सा सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह महान तिसे बसारे मुग्ध जान सदा सदा हो पूर्ण हार नानक राखनहार अपार रतन त्याग कौटी संग रचै सा झूठ झूठ संग मचै जो शरणा सो अस्थिर कर माने जो हो न सो दूर परान छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लेपो तारे तोय गर्द प्रीत पद्म संग होए अंध कूम में पशु विकराल नानक काल लेओ प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोग पचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्द नहीं गज करे छिपाया बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ समान अंतर अग्न बाहर धन स्वा कल पाथर कैसे तरे यथा जाके अंतर बसे प्रभाव नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लिहो गुड़ निभावे कहाँ बुझार्थ बुझे डोरा निष्कही है तो समझे पोरा कहाँ विष्णु पद गावे गुंग यत्न करे तो भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत उवा उस गमन करतार करना मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुहाव न चीज जो बिराई ता स्यो प्रीत बलुआ के अग्रे भीतर बसै आनंद के लमाया रंग रसै टिड़कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रो आहू जुगत बिहाने कही जन्म नानक राख लियो अपन कर करम तू ठाकर तुम पै अरदास जो पिंड सब तेरी राज तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे थे ऊंचा भगवंत सगर समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम थे हुए स्वाज्ञाकारी तुमरी घर में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी ही श्लोक देन हार प्रभ छोड़ गए लागे हंस आए नानक कहू न सी जई बिन नावे पाथ जाए शबरी दलपस धूलै पाशे पावे एक बस कारण बखोड़ गवावे एक बीना दे दस भी हिर ले तो मूढ़ा को का करे जिष्ठा कर सो नाही जारा ताको कीजे साध नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुखता हूँ मन उठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत सा अपनी दे राज खाद पीत भरते अनंत उलाद अपनी मान कश बहोर साले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे पर उसका विश्वास ना होवे जिसकी भक्ति से आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उससे चौकन करे निहाल

मिथ्या वापस ऊपर गर्द गुमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जब जब जी वे हर के चरण मिथ्या सुन पर निंदा सुने मिथ्या हस पर दर्व कोई रे मिथ्या नेत्र पेखद पात्र रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार गुतावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं पर पुकारा मिथ्या भास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सपै सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरति साखत की यार जा साच बिना कह हो तो सूचा बिरता नाम बिना तन अंध मुखा भेता के दुर्गंध बिन सिमन दिन रहन बिरसा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरते सब काम जो किरपन के निरार दाम तन तन ते जन कट फसी हो हर नाओ नानक थाके बल बल जाओ रहत अवर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु।

जिसके अंतर बसे निरंकार, जिसकी सीख तरह संसार, जो तो पाने तिन प्रभु जाता, नानक उन जन चरण पर आता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जान है, अपना किया आपे मान है, आपे आप आप करत नवेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, वो पाप शान सगल तेरा, सब कह जाने आत्म की रह, जिस पावे जिस लय लड़ लाए, थान थन अंतर रिया समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जब नानक हरी। श्लोक काम क्रोध हर लोभ मोह, बिनस जाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत सखाए, तिष्ठा कर को रख मनवाए, जय प्रसाद सुगंध अल्लावे, तिसको सिर परम गत पावे, जय प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मन अंदर, जय प्रसाद गृह संग सुख बसना, और पै सिमरो तिस रसना, जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याये त्यावन जोग, जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तिसे त्याकद अवर लवावे, जय प्रसाद सुख से सोई जय, मन आठ पैर जाका जस गवि जय, जय प्रसाद तुझ सब को मान है, मुक्ता को जस रसन बखान है, जय प्रसाद रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म, प्रभु जी जब धर गय महान पावे, नानक पासे ती कर जावे, जय प्रसाद रो कंजन देही, लिबला भूत राम स्नेही, जय प्रसाद राव ला रह, मन सुख पावे हर हर जस कह, जय प्रसाद रे सगल छिद्र ठाकै, मन सरनी प्रभु ठाकर प्रभु ताकै, जय प्रसाद तुझको ना पहुँचै, मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चै, जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करै, जय प्रसाद भूखन पहरी जै, मन तिर सिमरत क्यों आलस की जै, जय प्रसाद असवास दसवारी, मन तिर प्रभु को कभू ना बिसारी, जय प्रसाद भाग मिलख तना, रा प्रोहे प्रभु अपने मना, जिन तेरी मन बंत बनाई, उठ वैसा तिसे ते आई, तिसे ते आयो जे कर लख, यहाँ वहाँ नानक तेरी रख, जय प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान, जय प्रसाद तू आचार बिहारी, तिस प्रभु को साथ साथ चितारी, जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमर हो सदा अनूप, जय प्रसाद तेरी नी की जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात, जय प्रसाद तेरी पात्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहे, जय प्रसाद सुने करनाथ, जय प्रसाद पेखे बिस्मार, जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहि जय बसना, जय प्रसाद हस्त कर चला, जय प्रसाद संपूर्ण फल है, जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सुख सहि समावे, ऐसा प्रभु त्याग अवर गत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो, जय प्रसाद तू प्रगट संसार, सिर प्रभु को मूल न मनो विसार, जय प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूर्तता को जाप, जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे, जय प्रसाद तू पावे साज, रे मन मेरे तू ता से राज, जय प्रसाद सबकी

की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अस पदि जाज जांजा चे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम साजन की मांगो तूर पार में सरदा पूर सदा दा प्राके गुण गावो साह तुम त्यावो चरण गम से लागे प्रीत पत करो प्राके नीत कोटे को आधार नान मांगे नाम प्रसार प्राग दीट मां सुख होए आरा पावे बिरला को जिन चाक्या से जंत्र उताने पूर्ण पूर्ण नहीं डोला नय सोबर परे प्रेम रंग उपजे चाओ साध के संग परे सरनान सब त्याग अंतर प्रगा दिल लाग बड़ भागी जप्या प्राव सोए नान नाम रसो गोहे सेव के मनसा पूरी पही सदगो ते दिल में मत लई जान को भाव दयाल सेव की नवसा निहाल बंधन काल मूल जन पया जन मन दूप रंगया इस बुनी सरदा सा पूरी ही राव रहा सत्संग जूरी जिसका साथ लिया मिलाए नाम पति नाम समाए सो क्यों बिरे काल न पाने सो क्यों बिरे किया जाने सो क्यों बिरे सबके दिया सो क्यों बिरे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जय अगन में राख गुर प्रसाद को बिरला लाख सो क्यों बिरे जय बेगते कांड है जम जम का टूटा गांड है घर पूरे ता देह बजाया अपना अपना नान जानते आया साज सन करो एकाम अंत्या जपो और नाम सिम सिम सिम सो पावो आप जपो और नाम जपावो पद पाए तरिय संसार बिन पति तन उसी शार सब कल्या सुने नाम बुढ़ जात पाए बसराम सल दू का हो नास नानक नाम जपो गुणतास जी प्री प्रेम राचाओ मंत्र अंतरे सवाओ नेत्रो पे दर्श को हे मन भी से सा चरण तो हे भजन के मानता रंग बिरला को पावे संग ए बादी जे कर मे आ गुर प्रसाद नाम जप ले आ ताकि उम्मा कहीं ना जाए नान करे आ सर्व समाए प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत सदा कृपाल नान दा गोविंद गोपाल सब कटा करत प्रतपाल आदि पुर कारण करतार भजन के प्राण दार जो जो जो पैसो पनीत भगत पाए लावे मन हीता आम निर्गुण नीच जान तानक तुमरी सनपुर पवा सर्व मुदमो पाए निम करके गुण गाए अनगराज पो बढ़ियाई हर के नाम कथा मन पाई पो भोजन का पे सुगरी हे रन जपती हर नीत पली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध साध संग प्रभ दे नवास सर्व सुख दानक परगास लोका सर गुण निर्गुण अंकार सुन समाधि आप आपन गिया नानक आया पे फिर जा वस्त पादी जब आकार एक न दृष्टिता पाप होता कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर बो के संग माद जाव इसका मन चेर न जावत तब हर सुख के ब्यावत जब अपना पार ब्रह्म तब मोका किशोत परम आपन खेला वर्ती जा नान करने यार न दो जा जा बहुत प्र केवल तने तब बांध मुझको किसको गने जा बे के रगम पार तब नरक सुर को कौन उतार जब निर्गुण प्रस है सुबाए तब से सब को उठाए जावे आप अपनी जोत रहे ता कौ डर कौ का डरे आप जलता करने यार नान ठाक रगम पार अविनाशी सुख अपनासन ता जन मन को कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम किता कौ सोए जब अब गे तो गोचर प्रभ एका तब चेतर गोत के भू लेखा जब नानन गोचर गा दे ता कौ छुटे कौन बंधन बांधे आपना आप ही चर जा नानक आप रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरपत होता तय बिन मैल को क्या तोता जय निरंजन अंकार निर्बान तय कौन को मान कौन अवमान जय सूर केवल जगदीश तय शासन लगो की सा जय जो स्वरूप जो संसमा वह तय कह भू कंतरता वह कन करावण करने हार नानक करते का ना शुमार जावे अपनी सोभा अपन संग बनाई ता कम बा मित सो पाई जय सब गुलापे प्रवीण तय बेत देव कहां को चीन जय अपने आप अवतारे तो सगन अप सका बिचारे जय अपन ऊंचा पवनेरा तय कौन ठाकुर को ये चेहरा बेसमन में रह बसमाद नानका प्रग जानो आप जय शल शेर पे समायो के ब्यावत माया आप सुख आपे देश ते गुण का ना ही प्रवेश जय के पवंता तय कौन सी लागे चिंता जय अपना पते आ रहा तय कौन कद को सुने आ रहा बहु बेअंत ऊंचा नानक आप सुख आपे पहुंचा
जय आवरजो परपंच अकार ते गुण में कीनो विस्तार पापों ते पई कावत को नर को शुभ शावत आल जाल माया जंजाल में मोह परम पै पार दूसु मानव मानन प्रकार की हो बख्यान आपन खेलाव कर देख खेल संगो चे तो नानके कह जय अवक्त भगते आप जय पसरे प्रसाद संत प्रताप दो पा का पेता नहीं उनकी सुबह उन बनी आपे कौत करें जो जय आपे रात पूर्ण जोग जय पावे ते साप न लावे जय पावे ते खेल खिलावे बेशमार था तोले जो बुलावो त्यो नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकरा आपे वर्तन हार नानके को पसरिया दूजा कह दिशास पारी आप गदया सुन यार आपे का बता जाते पासे सो पाए अपने पाने लै समाए तू ते पै नहीं कुछ होए आपन सूत सा जगत परोए जा को प्रभु जी आप जाए सच नाम सोई अन पाए सो सुमद सीता का बेता नान ससी का जेता जी जन सा ताके आद दीन दयाल नाथ को नाथ जे रागे ते को न मारे हे सो मुआ जे मनो बसारे हे ते ता और कां को जाए सब श्रेख नरंजन राय जी के जो जाके सबात अंतर बार जानो साथ गुण दान बेअंत पार दान दास दा बलहार पूर्ण पूरे दयाल सब उपरोत कृपाल अपने गत जाने आप अंदर जा मेरे हो बया परत पाले जी अनुभव पा जो जो रहते त्या जे पावे ते लहे मलाहे भगत करे हर के गुण गाए माने अंतर विश्वास कर माने करना नानक जाने आ जान लागरे के नाहे तिके आ न बिरथी जाए सेवको सेवा बन आयु कंबूज परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं बचार जाके मन बसे निरंकार बंधन तोर पैर निर्वैर निर पूजे गुर के पैर ए लोक सुखी है पर लोक सहिल है नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम ना तकरो बचा दुर्लभ दे का करो उदार अमर बहन हर के गुण गाओ प्राण तन गाए सो आओ आठ पाप पेखो नेरा मिटे ज्ञान बिसे अंधेरा सुन बदे सिर दे बसावो मन छे नान फल पावो हल्द बल्द लियो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुरु की पूरी देखिया जिस मन बते साज परीखिया मन दा नाम जपो ले बुलाए दूध मन ते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगे ने बेखे तुम्हारी एक आडे रखो मन माए नानक बोर न आवे जाए तिते दूर काम को जाए उबरे राखण हर ते आए निर्भो जा सर्प मिट है प्रागुरपा ते प्राणी छूट है जे प्र राखे ते नाहे दू नाम जब मन हो वसूखा चिंता जाए मिटे अंकार ते जन को कोई न पहुंचन हार सिर ऊपर ठांडा गुर सूरा नानता के कार्य पूरा माध पूरी अमर जाके दृष्ट दस बेगो दरसेट चन गल जाके अनूप सफल दस सुंदर रूप तन सेवा सेव परवान अंतर जामी पुर प्रदान जिस मन बस है सो हो तनिहाल ताके दिन आवदकार अमर पै अमरा पद पाया सा सन्नान कर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान देर बदास हर कृपा दे संत पेटिया नानक मन प्रगास पादी संत संग प्रवडी ठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समगरी इस कट माए अन कराना ना दिष्टाए नौ निदमर प्राप का नाम देही मैं इसका बसराम सौ समार अंतनाद कह न जाए अचस बंबार तें देखिया जिस आव दिखाए ना ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बार आनंद घट का ब्याह रहा भगवंत तरल मय आकाश प्या सब लोह पूर्ण प्रतपाल बंतन पर्वत है पार बन जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन बनी बसंतर माए चार गुण दह दे समाए ते ते पे नहीं कोठाओ गुर पछा नान सो पाओ वेद प्राण सिमर मैं दे ससी सुन त्रमय का बाणी प्रभ की सब को बोले आप डोल न कबू डोले सर्व कला कर खेले खेल बोल न पाई गुणे अमोल सर्व जोग में जाच की जो तारो स्वामी हो तो पोता गुर प्रसाद परम का नास नान तिन में बिसास सन्ना का पेखन सब ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संजना सुने सो भजन सर्व्यापी राम सरन जिन जाता दिखिए रहत साध बन साध सब कह जो जो हो सो मान है कन ग्रामा प्रभ जान है अंतर वसे बार भी होई नान दर्शन दे सम होई आप साथ किया सब साथ ते प्रातः सली उत्पात ते पावे तं करे विस्तार
ते पावे ताए कंगार अनगरा लखी ना जाए जे पावे ते लय मलाए कम निट कम कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगा साफ जड़ाए ना ते जन आप जाए सरभूत आवरतारा सर्व नयन आपे गणहारा सकल समगरी जा का तना आपन जा साफ ही सोना आवन जाने खेल बनाया गया कारी की नी माया सब के मतलब तो रहे जो के कहना सो जो के कहना सो आपे कहे आग्या आवे आग्या जाए नान जाम पावे तन ले समाए इस ते वह सोना ही बुरा उरे कहो कि नहीं किस करा आप अला कर तू तनी की आपे जाने अपने जी की आप साज तारी सब साज होत बहुत अपन सा राज ताकि घर में कहीं ना जाए दूसरों तन सो जी पाए तिसका किया सा परवान गुर पिछाड़ नानके जान जो जाने ते सदा सुख होए आम लाए लय प्रभ सोए ओ तनवंत कलवंत पतवंत जीवन मोत जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सजत राया जन आवन का सुभाव जन के संग जित आवे नाव आप मोत मोत करे संसार नानक ते जन को सर।

भेद बखानी सगल मतांत केवल हर नाम। गोबिंद भगत कै मन बस राम। कोट पराध साध संग मिटै संत कृपा तह जम तह छुटै। जाके मस्त करम प्रभ पाए साध सन नानक ते आए। जिस मन बसै सुने लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत। जन्म मरण तक दुख नवारे दुर्लभ दे तत काल उदारे। निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन मैं समाणी दुख रोग बिन से।

जगत गोचर भाई रहो मोल नहीं के कन जुग क्या को कह सुनावे कद कह से को सोजी नए जो पिगे तिस्मण आवे सोई जाने करण यारा कीता क्या बिचारा अपनी गत में तो आपे जाने अर आपे पूर भंडारा ऐसा अमृत मन चक्या तिर तुरे अगाई कौन नानक मेरी आशा पूरी सतगुर की सुनाई राम करी महला पंजवा अंगीकार किया प्रभु अपने बैरी सगले साधे जिन्ना बैरी है जग लुटिया ते बैरी ले बादे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रसमाणी नाओ जपी पर वसा तेरा राओ जितना आपसे दूजी बात आओ सिर ऊपर रखवा रहा बेपरवाह रहते स्वामी एक नाम के आधार पूर्ण है मिलो सुधाई हूं न कहीं बताओ ता सर परम पद पाया छोड़ना का तू जाता वन सा को जैसा तू है सच अलख परा होतल था डोल स्वामी नानू का सुमारा राम की मेला पंजमा तू दाना तू आप चल तू ही तू जात मेरी पाती तू डोल कदे डोले नाई ता हम कैसे ताती एक तू ही एक तू रायर तू कृपा ते सुख पाया राओ तू सागर हम हंस तुम्हारे तुम्हें माणक लाला तुम देव तिल संक न मानो हम पूछे सलाने वाला हम बार तो पिता हमारे तुम देव खीरा हम खेल सब लाड लावे तुम सब गुणी गहीरा तुम पूरन पूर संपूरन हम भी रंग अघाए मिलत मिलत मिलत मिल रिया नैन कह न जाए राम की महला पंजवा कर कर ताल बजाओ नैनो मात बजेर बाबा किनो मद बासरी बाजे जीवा तुनवा गाजा नृत करे कर मनवा नाचे आने कुंगर साजा राम को नतगारी पेक बेकुना दिया लाजे तसा सुगारी आ कर मंडली था तन सुबाई पर गंगन चंदोवा पवन चोला करत अकेला जल ते उपतोवा पंचर पुत्रा की नाव के तुमला बहुआ चंद सोय दिजाय चरा कर भीतर राखे दस पातो पंच संगीता एक भीतर साते पहन पहन हुए पाव जो खावे सुबह नारी पाके घर करने तो है धंधा दी कड़क जावे तूरा एक नावे एक बवा एक आए जाए वह तूरा कौन सुबह नाचे जिस गोरो पेटे पूरा राम करी महला पंजमा ओंकार एक तनो एक है एक राग लपे एक देसी एक दखा वै करिया भी आपे का सुदे कहीं सेवा एक गुरते जापे पलो बोल रे कीतनिया राम रमा रामा गुन गाओ छोड़ माय के धन सवाराओ पांचवी तत् संदुकाओ ससुर ले चाले माजा मन तान ताना पाओ नबी गा काले फिर ना हुए कवि एक सामद बंद पाले नाटी नर जान दूरे कुंगड़ खाट दिया सूरे सहज आनंद दिखावे पावे ये नृत्यकारी जन नवावे जो को अपने ठाकर भावे कोट मादे एक कीर्तन गावे साजना की जाओ टेक कौना ते कीर्तन एक राम की महला पंजमा कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे को सैया कोई अलाए कान कर गरीम कृपा तार ही मरा कोई नावे तीरथ कोई हज जाए कोई करे पूजा कोई सिर नवाए कोई पढ़े वेद कोई कतेब कोई डे नील कोई सफेद कोई कहे तुर कोई कह हिंदू कोई पाचे पिल सोको सोई सिर बिंदु कौन नानक जिन हुक्म बचाता प्रभ साहेब कहो तिन भेद जाता राम की महला पंजमा पवन है पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाय माटी माटी हो रोवन हारे की कमन टेक
कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचार, ये तो चलत प्यारा हो। अगले की जो खबर ना पाई रो नार भी उठ सदाई, परम मोके का बांधे बंद, सुन भया पगलाए अंद। ए तुर चुन रच कर तार, अब जाओ कुमा पार, ना कुमुआ न माने जो न मिन से अवनाशी होगा। जुए जानो सोए नाए जन हर को बल जाओ, कौन को फर्ज कहा ना को मरना आवे जाया, राम अपनी महिला बनमा। जब गोविंद गोपाल लाल राम नाम सिमर तू जीव, फिर ना खाई मां काल राव। कोट जन्म परम परम भरम आयो, बड़े पाव सासंग पायो, बिन गुरपुर नायू दार, बाबा नानक आखे एओ विचार। राग राम कृ महला पंजवा कर दूजा इको ओंकार, सतगुर प्रसाद। चार पुकारे ता तू मान, खड़वी का बात बखान, बस्ती मिले को कहो ता भी जोगी भेद ना ले, कुंकरी अनूद बाजे जोगी अमत मारू रे राव। प्रथमे बसिया सत का खेड़ा, द्वितीय माँ किश महा दो तेड़ा, द्वितीय और दो वर्ष माँ एक रिया ता एक दखाया। एक सूत बरोए मणिया, गाठी पेन पेन पेन पेन तनिए, प्रतिमाला बोविद पाए, किंचा सूत नाई था। चौमे को मट किया, तेवर के स्थान अनकड़ किया, खोजत खोज द्वारे आया, ताना जोगी मैल कर पाया, कुंकरी नु वाजे सुन जोगी के मन मीठी लागे राव दूजा। राम की महला पंजमाओं तगा करके लाए गिथली, लो नाड़ी सुहाया ती अंबे का कंडा तारिया, क्या तू जोगी बार बहा पर आओ, जब नाथ न रहनाई तेरी इतना दूधा हाई राव। गरीब भूत लाए बेटा ताड़ी, मेरी तेरी मंदर तारी, मेरी तेरी मुंदरा तारी, मन टू तापते पावे, ना छोड़ा चेला जनावे। चाल जद जोगी आसन तेरा, सिंजी वाजे सा उदे सा, गुर गुर की तै बूझ ना पाई, पर वह जोगी आवे जाय। जिसनू अनाथ कृपाला, रह रस मारी गुर गोपाला, नामे खिंदा नामे बस्तर, जनान जोगी हो अस्तर, यूं जपिया नाथ जन रणाई, उन पाया गुर गोसाई राव दूजा। राम कली महला पंजमा, कर्ण करा मन सोई, आन दी से कोई ठाकर मेरा सोर सजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, ऐसो रे रस मीठा, गुरमुख किने वेले डीटा राव। निर्मल ज्योत अमृत वरनाम, अमृत पिया पैने काम, तन मानो शीतल गनवारी, आंदरू पटे संसारी, क्या देव जाओ सब कुछ ते दाओ, सब ले आ जाओ लखवी राओ, तन मान जियो पिंड दे सजिया, गुरबा नीतन वाजिया। खोल के वारो महल बुलाया, जैसा सता सुख लाया, कौन नानक सा पर्दा टूटा, हो तेरा तू मैं मन उठाओ, राम प्री मैं लाओ पंजमा। सीव गलायो अपने सेव, अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चंतो अपन मारी, तिस गुर को हो बल साधु बलिहारी, काज मारे पूरे सतगुर, बाजिया न तूरे सतगुर राव। मेहमान जाकी गैर मीर, होए न्याल दे जतीर, जाके बंधन कटे राय, सोनर बो न जूनी पाए, जाके अंतर प्रगट्यो आप, ताको नहीं दुख संताव, रात तन दिल पाले परे आओ, सगल टंब कुटंब जन ले तरे आओ, नक्ष परमना दूधा पा दूजा, एको एक निरंजन पूजा। जत कद देखो आप दयाल, कौन प्रभ मिले रसा, राम की महला पंजवा, तन रे छुटकी अपनी तारी, प्रभ की आज्ञा लगी प्यारी।
ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਿੱਠਾ, ਤਾਂ ਅਚਨੈ ਨੂੰ ਡੀਠਾ। ਅਬ ਮੋ ਜਾਨੀ ਰੇ ਮੇਰੀ ਗਈ ਬੁਲਾਏ, ਬੁਝ ਗਈ ਤਿਸਨੂੰ ਨਿਵਾਰੀ, ਮਮਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਲਿਓ ਸਮਝਾਏ ਰਹੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਸਰਨਾ, ਗੁਰਬਰਾਏ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨਾ, ਬੀਸਵਰ ਕੇ ਜਾਕਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾਨੇ, ਗੁਰਪਾਵ ਰਮੇਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਜੋ ਜੋ ਕੀ ਨੋ ਆਮੋ ਤਿਸ ਕੇ ਦਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਗਲ ਵਾਸ, ਨਾ ਕੋ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਬਹਿਰਾਈ, ਗਲਮ ਚਲੇ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾ।

रामकृष्ण महला पंचमा मुक्ते पड़ता टीका सहित हृदय राम ने पूर्ण रात उपदेश करे कर लो सुर दृढ़ावे अपना के अपना कमावे पंडित वे विचार पंडित मन का क्रोध निवार पंडित राव आगे रखो साल राम मन की नौंदा दस विश्राम तिल चरावे पाई पाए लो बचारा दुख माए खट कर्मा और वासन धोती पाउड ग्रह पड़े नित बोती माला फेरे मंगे बभूत कोई न तरियो मीत सो पंडित गुर शब्द कमाए तैवण की उतरी माए चतुर्वेद पूर्ण नाए नान रिकी सरनी पाए राम की महला पंचमा कोट बेगना ना आवे नेर अनक माया ताकिया चेर अनक भाव ताके पानी आ जाको माया पही करतार जस हई हो भगवान अनक जानो आके संजाम राव करता रखे गीता कौन किरियत सगला पौन ब्यांत में माता की कत कबरन बल हो जाये ताके चरना तिने किया जाप ताप ध्यान प्रकार किया तन दान पाऊ सोई कल में प्रमाण जा कोठा कर दिया मान सौ संग मिल पै प्रगास सुसाज वास निवास पूरे सतगुर दिया विश्वास नाट कोय दास सुंदर राम के मेला पंचमा दोष न दीजे कहूं लोग सुख मन सोई होग अपन कना पे बंद अमन मया तंद वैसी जानी समझनी संत प्रकाश पहे पूरे गुरबचनी राव तन तन कलत मिथ्या विस्तार हैवर गैवर चलनार राज रंग रूप सब कूर ना बना जसी तूर भरम भुले बादंकारी संग नाही रे सगल पसारी स्वर्ख मैं देवर दानी सातवी करत बेरा मैनी अरखा नामृत कलमाए न दाना साधु पाए नानक गुर गोविंद जस तूठा काटर मैया तिनी डिठा राम की महला पंचमा पांच सावध तै पूर्णाद अंध वाच बिस्माद किल करे संत वर लोग पावन पूर्ण जोग सुसैनंद भवन सास बैस गुण गावे तै रोग सोग नहीं जन्म मरण राव वहां सिमरे केवल नाम बल्ले पावे विश्राम भोजन पाओ कितना दार न चलो आसन बे समार दीग न डोले कतू न तावे गुर प्रसाद ओ मैल पावे परम पै मोना माया जाल सुन समार प्रभु कृपाल ताकांत न पारा वार वापे गुप्त वापे पासार जाके अंतरवार हर स्वादु कहन नानक बिस्मा राम की मेला पंचमा पीड़ संग पाव रम चित वाया संगत कर संतोख मन पाया संते चन माथा मोर पौत अनक बार संत डंडौत ए मन संतन बलिहारी जाके उठ गई सोपा रखे कृपा तारी राव संत चरण तोये तोये पीवा संत दर्श बेक बेक जीवा संत की मेरे मन की आस संत मारी नरम नरम राव संत मार रख पड़दा संप्रदा मुख बुना कड़दा संत संग दिया कृपालो संत सुहाई भय दयालो सुरत मत बोध बरगासु गैर गिर पार कुंतास जी जान सगरे प्रतिपाल संत देख नान संत देखने आल राम की महला पंचमा तेरे काज न ग्रह राजमाल तेरे का विखे जंजाल इसमें जान सब छल अर्क नाम संग तीर चल राम नाम लूंगा ले मिता बिसरते लाज रहे हसमृत जम कछ न कह रो बिना हर सगनार्थ कामो सुन रूपा मटी दाम गुरग सब जाप मन सुखा तेरा उजल मुखा कर करो ताके बड़े बड़े किने किए काज माया पूरे हर नाम जपे जन कोए
ताकि अस पूर्ण होए। हर भगतन को नाम उदार, संत जीता जन्म पार, हर संत करे सोई प्रवान, नानदास के कुरबान। राम कली महला पंजवा, सिंचे धर्म देख दुख लोग, तेरे काज न ब्रस जोग। करम कर हो बरते अंध, जम की एवड़ी तू आगे बंद। छालो राणी तात मुड़े, अंबस रात मुड़े, माया के माते तह उचल नाऊ, राह चरे हो तू संग सुपना राव। बार बस्ता बार को अंध, पर जो वन लागा दुर्गंध। तृतीय अवस्था सुनचे माए, बिरध ब्याह छोड़ चलियो पताए, चिन काल पाए दुर्लभ दे नाम होनी हो खे। पशु प्रेत मोद ते बुरी, तिस ना बुझे जिने श्री। सुन करतार गोविंद गोपाल, दीन दया सदा कृपाल। तुम्हें चढ़ावो छूटे बांधो, बस लो नानक जग मंदो। राम की महला पंजवा, कर संजो बनाई काचो, तिन रचो अन्ना राचो। कृपाल ने सार संभाले, अंत की बार उठ धारे। नाम बिना सब झूठ पुरानी, गोविंद बिन बिन अबर संग राते, समाया मूठ पुरानी राव। तीर्थ नए ना उतरस महल, कर्म धर्म सब में फैलो। बेचारे गत नहीं होए, न मुने चाल से रोए। मिन हर नाम न झूठ टूट पटल, सुदे सा सिमरत सगल। सो नाम जपै जिस वाप जपाए, सगल भला से सुख समाए। रखनो रखो आप सब सुगा, प्रभु तुमरे हाथ। जित लावो ते लागे स्वामी, नान सवंतर जामी। राम की महला पंजवा, जोच करे सोई सुख जाना, मन समझ सा संपत्ति अन्ना। डोल चुका ठहराया, डोल ते चुका ठहराया, सतमय सत माया। दुखे असर हो गया, प्रभु की आज्ञा मन में मानी, मां पर का संग पयाराओ। सगल पवित्र सर्व निर्मला, जो वरताए सोई भला, जय रखे सोई मुक्त थान। जो चपाए सोई नाम अर्थी, तो सह सात भगत रहे, तय बकुंठ सह नाम उचरे। सर्वनंद जब दर्शन पाइए, राम गुणा नितन तो हर गाइए। आपे खट रहा भियाप, जल प्रताप कपट खुलाने परम नठ दूरे। नान को गुर पेटे पूरे, राम की महला पंजमा। कोट जाप ताप विश्राम, रिद बोध सिद्ध सुर ज्ञान। क्रोभ रंग भोग रसे, गुरु नाम निमिख हृदय वसे। हर के नाम की बढ़ियाई, किम तो कह न जाई राओ। सूर भी तेज मत पूराओ, ससमाद तन गैर गमीराओ। सदा मुक्ता के पूरे काम, जा करे बसे हर नाम। सगल सुख आनंद रू, संदासी पूर्ण जो आए न जाए डोले कतनाई। जाके नाम बसे मन माई, तीन दयाल गोपाल गोविंद। गौरमुखरे उतरी चंद, नानक को गुर दिया नाम। संत के टैल संत का काम, राम की महला पंजवा। बी मात्रा कीर्तन गाओ, आगे मिलनता बेताओ। गुरुपुरे की चरणी लागो, जन्म जन्म का सोया जाग। हर हर जाप जपला, गुर कृपा तेर देवा से, पौ जल पावर पर लहराओ। नाम दांत्य है मन अटल, ता झूठे माया के पटल। ग्वासम तरस पियो, ता तेरा वे निर्मल जी। सोधत सोधत सोध विचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा। सुहर भजन साध के संग, मंत्र रपे वर के रंग। छोर से अन बहुत चराई, मानो बिन हर नावे जाए नकाई। दयाव तारी गोविंद गसाई, अर नान टेक टकाई। राम की महला पंजवा, संगे संत के संग, राम रंग केलो। आगे जम से हो न मेलो, अंबद का भया बनास, रंधोए सगली नास। राम नाम गुण गाए पंडित, कर्म कांड हंकार न काजे। कुशल सेती कर जाए पंडित राव,
हर का जस निदलिया लाभ पूर्ण वह मनोरथ साहब दुख नाटक सुकर में आया संतरा कमल बिकसाया नाम रतन जिन पाया दान ते जिन हो सक निदान संतो खाया मन पूरा पाए फिर मगन काए जाए हर की कथा सुनत बबीत जीवा भगत पाए गत में तो सुगरवां जो हृदय बसाई नान तेजनो तुम पाई राम कली महला पंजवा हो गए पकड़ी आई हात पी लगे चाय लेने साथ कौना जो त्याग दही ताबो चाने आए पाई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम में नगत नहीं काई गुरपुरा पेट तू धार राव जब सको कोई माने देवे मान ताव उसको रखे गुमान जब उसको कोई मान पर हरे ताव सेवा करे मुख में रावे अत ठगावे एक तो ठार ओ कहीं न समावे उनमोहे बहुते ब्राह्मण राम जनी किनी खंड खंड जो मांगे सो भूखा रहे संग रचे सो कछ न लहे इस शंकर बड़भागी नान को उतरे राम कली महला पंजवा आत्म राम शर्म पेख पूर्ण पूरया प्रवेक रत्न मोल हृदय मैं जान अपने बात तू आप पहचान पी अमृत संतन प्रसाद बड़े पा हुए तो पाइया बिन जीवा क्या जाने स्वाद रहो अठ दस बेसुने कै डोरा कोट पर घास ना जुसे अंधेरा उस प्रीत का संग रचे जिस नाई बुझावे सो केत बिद बुझे जाना रिया प्रभ जानो तो भक्त संगान बिकस बिकसो अपना प्रभ गावे ना तिन जम लेट ना वे राम की महला पंजमा दीन नाम की उपवेत अतन रास ना से वेत घटी बंद अच्छी वाले अर भक्त राम गुण गाए बाजे आनंद बाजा रस रस गुण गावे हर जाना अपने गुरदेव नवाजा राव आए बन पुरला भाग जन्म जन्म का सोया जाग गई गलान साधगे संग मंत्र रातों हर के रंग रखनारे रखनहार दयाल नाग सेवा नाग जगाल कर कृपा किनी दया बूढ़ दुख मैं कंड लिया सुन तुम जो मन में चाहो अट पर हर के गुण गाओ गावत गावत परम गत पाई गुर ना गुर प्रसाद नानक बुलाई राम कली महला पंजमा कौडी वज दले त्यागे रतन छोड़ जाए ताऊ का जतन जो संचे जो ऊंची बात माया मोया टेढ़ो जात अपागे ते लाज नाई सुसा पूर्ण परमेश्वर हर नचे तो मन माई राव अमृत कौरा विखिया मीठी साकत की बदन डीठी कूट घट अहंकार जाना नाम सुत जन बिछुड सन माया कारण साधी चूरे मन मुख कब ना उतत करे निर्भाओ निरंकार दातार तिसो प्रीत न करे गवार सब साह से साचा साओ वे मोता पूरा पसाओ मोह मगन लपट्यो ब्रह्म ग्रह नान तुरे तेरी मेहर राम करी महला पंजवा रैन दिस जपो वरना अर गए दर गए पावो थाओ सदा आनंद नाओ सोग कबन व्याप्यो मै रोग खोजो संत वा हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्म बिस्म भय बिस्मा दाओ परम गत पावे अचमर पुरानी राव घनम देखो सगल विचार ना बिना को सगे ना तार सगल पावना संग चाले संग पगल तरिये प्रभ के रंग दी तोये न उतरे मैल हमें व्यापे दूधा पहल हर औख जो जन खाए ताका रो सगल मिट जाए कर कृपा पावर दयाल मंत कबूना विसर गोपाल तेरे दास की ओ वातूर
ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸਰਦਾ ਪੂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰੀ ਸਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਤੂੰ ਸਿਮਰ ਪੂਰਨ ਪਾਵਰਮ ਸੋ ਤਹਿਜ ਪੂਰ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੁ ਨਾਓ ਇੱਕ ਸਨ ਗਈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੁਮ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ਰਾਓ ਜਪ ਜਾ ਜੀਵਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਅਗੇ ਦਰਗੇ ਪਾਵੋ ਉਠਾਓ ਦੁਖ ਦੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਦੁਨ ਸੇਰਾ ਚਿਹਰ ਨਾਏ ਚਨਕ ਮਸੋ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਨਿਰਮਰੀਤ ਪਾਪਾ ਕਾ ਨਿਰਭਉ ਮਨ ਵਸੈ ਅੰਤਨਾ ਵਰਸਨਾ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹੋਰ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਠੇ ਪਾਏ ਪਾ ਲਾਵੋ ਸੱਚਾ ਤਨ ਲਾਏ ਟੁੱਟ ਨਾ ਵੇ ਕੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਸੋਏ ਹਰਦੁਆਰ ਰਾਮਕਨੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਤਨ ਜਪੇ ਹਰਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਦਇਆ ਕਾ ਪੋਤਾ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਤਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਕੋ ਭੰਡਾਰ ਖਾਤ ਖਰਚ ਕਿਸ ਟੁੱਟ ਨਾ ਵੇ ਆਂਤ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਰਾਓ ਕੀਰਤਨ ਅਨਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਆਂਧ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੀ ਸੁਨ ਗਵਾ ਸਮਾ ਗਵਾ ਤੇ ਆਸਨ ਕੇਵਲਾ ਪੂਰਨ ਤੈ ਬਾਸਨ ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਤ ਕਰਤੋ ਚਾਰ ਸੋ ਗੁਣਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮਤ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੁਆ ਮਟਾਇਆ ਸਾ ਸੰਗ ਤਨਵਾਰ ਤਨ ਪਾਇਆ ਜਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਮੇਰੀ ਵਰਤਨ ਹਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਰਾਮ ਕਿਰਿ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਿਮਾ ਨ ਜਾਣੇ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਜਾਣੇ ਭੇਦ ਅਵਤਾਰ ਨ ਜਾਣੇ ਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਆਪਣੀ ਗਤ ਆਪ ਜਾਣੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਅਵਰ ਬਖਾਨੇ ਰਾਓ ਸੰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਭੇਦ ਖੋਜ ਖੋਜ ਵਾਰੇ ਦੇਵੋ ਦੇਵਿਆ ਨੇ ਜਾਣੇ ਮਰਮ ਸਭ ਪੁਰਵਾਲਕ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਕਰਤਾ ਕੇਲ ਆਪ ਚੋਰੇ ਆਪੇ ਮੇਲ ਆਪੇ ਬਰਮਾ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪ ਜਣਾਏ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਸੋ ਬੋਲੇ ਉਹ ਭੇਖੇ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਲੇ ਪੋ ਤੇ ਪੁਨ ਨਾ ਪਾਪੋ ਨਾਨਕ ਪਾਪੋ ਆਪੇ ਆਪ ਰਾਮ ਕਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਛ ਕਾਜ ਨਾ ਕੀਓ ਜਾਨ ਸੁਰਤ ਮਤ ਨਾਏ ਕਿਛ ਗਿਆਨ ਜਾਪਤਾ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਕਿਛ ਨ ਜਾਣੋ ਕੈਸਾ ਕਰਮ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਰਾਉ ਰਿਦਨਾ ਬੋਧਨਾ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ ਬਿਕੇ ਵਿਆਜ ਕੇ ਗਾਉ ਮੈਂ ਬਾਸ ਕਰਨ ਹਰ ਮੇ ਪ੍ਰਵੇਕ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮਨ ਮੈਂ ਟੇਕ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀ ਓਏ ਮਨ ਏ ਵਿਸਰਾਮ ਪਾਪ ਕੁੰਡ ਦਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਜੇ ਨਾ ਵੇ ਚੁਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਸੋਏ ਉਪਾਏ ਤੇਰੀ ਆਸ ਸਗਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਬਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਦਿਆਲ ਕੋਟ ਭਾਵ ਖੰਡੇ ਨਿਮਕ ਖਿਆਲ ਸਗਲਾ ਦੇ ਜੰਤ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਸਮੰਤ ਜਿਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਾਮੀ ਘਟ ਕਰ ਰਾਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਉ ਤਾਂ ਕੀ ਗਹੀ ਓ ਮਨ ਓਟ ਬੰਧਤ ਹੋਈ ਛੋਟ ਦੇਜਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆਨੰਦ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਰਨ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਚਰਨ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਦਾਰ ਉਚੇ ਉਚ ਪਾਰ ਸੋ ਮਜਿਤ ਹਰ ਸਮਰੀ ਜੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪੇ ਦੀ ਜੈ ਸੁਸ ਆਨੰਦ ਵਰਨਾ ਨਾਨਕ ਜਪਿਆ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਨਾਉ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਗਲ ਅਣ ਵਿਛਾੜ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਸਾਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਗਲ ਮਟਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਹੀ ਫਲ ਪਾਏ ਹੋ ਸਾਵਧਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿਓ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਪਵੇ ਸਗਨ ਦਾਨ ਗੁਰਸਿਓ ਰਾਓ ਦੂ ਜਾਨ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਸਗਨ ਰੰਜਨ ਸੋਏ ਮਾਨ ਕਹ ਕਰ ਰੂਪ ਨ ਜਾਣ ਮਿਲਨ ਮਾਨੇ ਮਾਨ ਗੁਰ ਕੀ ਆ ਟੇਕ ਡਕਾਏ ਅਵਰ ਆਸਾ ਸਭ ਲਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਾਗ ਨਦਾਨ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪਾਵੇ ਮਾਨ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜਪ ਮੰਤ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸਾਰ ਤਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਦਿਆਲ ਨਾਨ ਦਾਸ ਨਿਆਲ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੋਏ ਸੋਏ ਬਲ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਤਜਬ ਮਾਨ
दिन रहन सदा गुण गाओ, पूरे स्वंद कर संत वर जापो, छाट सियन बहु चतराई गुर का जापो, मन निर्मल राव एक घी करवा सीतर नर्म जाप वर हर हर हर गुर के चार नमस्कार पौ जो तरह पार देवन हार दतार अंत न पर बार जग कर सर्व निदान रखनो हर निदान नानक पाय निदान हरे हर नर्म नाम जो जपै तिस की गत हुए नानक प्राप्त हुए राम की मेला पंजमा दलो देसवार जाए न दर गे हार पलत दुए बड़े आई अंत की बेला ले छुड़ाई राम के गुण गुण गाओ हलत पलत हुए दुए सुले अचर पुरख दिया रा उठल बैठ द्वार जा पोवन से सगलता बैरी सब हुए मीत निर्मल तेरा हुए चीत सब देवत में कर्म हो सब धर्म शेष धर्म हो अस मनो तेरा हो दार जन जन्म का उतरे पार पूर्ण तेरी हो वे आस जमगी कटे तेरी पास गुरु देश नी जय नानक सुख सह समी जय राम की मेला पंजमा जिसकी